अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है।

काहु बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै ना पाई, अनेक भगत बंदन नित करहै।

चिहन ना जापत, तब हरख सोग कह किस है व्यापत। जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै, तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस

परजा जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप।

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम।

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की रीस है होर

पौड़ी जो तुझ सच ध्यान दे से बिरले थोड़े जो मन चित एक आराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े तुझ नो सब ध्यान दी

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए, हीरे परवाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया।

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जां गुर कहै उठो मेरे भाई, बह जाहे कुसर बगलारे। गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै,

जिहनर राम भगत नह साधी जन्मत कासना मो अपराधी रहाओ मुझ मुझ गर्भ गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया।

है अबोल तह मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे पायो अभंग अशेद।

संताती दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाय सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

रहाउ। बहुते अवगुण कु कह कोई, जां तिस पावै बख्शे सोई, गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जय देखां तहें एको सोई।

शोभा कंठ फूले प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान। दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया

शगुन अपशगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पहावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

हर एक है बहुविध सृष्टि उपाई हुक्मे कार कराएं दा दूजा किस कहिए पाई।

अमृत शक्षके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत दुख।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

पांड मुआ फंड पहलिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान पंड हो।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा।

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बेख काम लुभ राता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ बेख फल मी

जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया त्रिप्त अगहन मुक्त पय जोत समा

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीते नानका बहुते खटिय है बेकार।

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सदा सुख बसहि, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई।

पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम तिन चरण सरे वह हम लाग है तिन कै पाए राम हर हर चरण।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा जोग।

प्रयाण ज्योतिष पावे सम्रथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस्चारो गुण छोड़।

दिन रस भोग सात अन महल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने कंत संभाल है।

मिल है। जे सतगुर लाग है साचे पाए, सतगुर सदा दयाल है। अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए, दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती, सच्चे शब्द सदा सुख।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखहो एक निमख निमख,

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक

चात्रक जल जो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

जिन हर ते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुखदाता निखोट न कभी ही जाई आनंद पया।

गुर पूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी।

या भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

भाई किव छुट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप

बिन गुर मूड भये है मन मुख ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना लैलाहा खिन खिन भगत करहे दिन राती गुरमत भगत उमाहा राम हर हर हर गुण हर हर गुण गोविंद जपाहा खिन खिन भगत करहे।

ਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸੰਤ ਆਬ।

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई, खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। स्लोक

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत सिउ, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्भ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सिउ पाओ ना कीनो, नह सत पुरख मनायो। तावत को ताव है बहु पांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन देख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन तिस ही को गृह।